महाराज, तो कैसा लगा आपको गाना? मैं शिव का हूँ शिव मेरे, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय शंकर, जय महाराज, टेक केयर।

चिंटू बहुत बड़ा हूँ मैं, और मैं तुझे अपने कंधों पे कैसे उठाऊँ।

दौलत भी शौहरत भी अज सब कुछ कोल मेरे अखा सामे तू नहीं एहो दिल विच मौल मेरे अज 14 सालां बाद मुड़िया हां उन्हां रावां ते देख के उही हवावां क्यों अज वधियां सावां ने काश जे मिल जे तू ता जिंदगी सफल हो जावे तू गीत मेरे दा कल्ला कल्ला लफ्ज हो जावे।

0: मेरा परिवार शायद छड़ के चल गया।
1: तो कुछ साल बाद मैं तेनू एक हाथ लिखिया ते उसने रोज पढ़ दी गई
0: पढ़ता सी तो एक दिन
1: हर रोज हर सवेर तू मेरी वेट कर ते मैनू वेख वेख तेरी छोटी जी स्माइल च सब कुछ पता लग जाए।
0: तो पता भी नहीं सी कि इन्नी छोटी जी उम्र च इतना प्यार हो
1: सकता। मैनू पता सी तो मैं तेनू दस सकां कि मैं तेनू किन्ना प्यार करती हूं।

आज भारी बारिश की चेतावनी के कारण द्वितीय पारी की कोई भी कक्षा नहीं चलेगी। कल रविवार का विद्यार्थी टूर अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। कृपया सूचित रहें। डीएस साइंस अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर सिटी।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
2: 89.6 पे
1: रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: आज भारी बारिश की चेतावनी के कारण द्वितीय पारी की कोई भी कक्षा नहीं चलेगी। कल रविवार का विद्यार्थी टूर अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। कृपया सूचित रहें। DS साइंस अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
1: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
3: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

0: ये फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूं तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: आज भारी बारिश की चेतावनी के कारण द्वितीय पारी की कोई भी कक्षा नहीं चलेगी। कल रविवार का विद्यार्थी टूर अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। कृपया सूचित रहें। डीएस साइंस अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।

0: कोई भी कक्षा नहीं चलेगी। कल रविवार का विद्यार्थी टूर अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। कृपया सूचित रहें। डीएस साइंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: ईट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल। गंगापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मिला। दोस्तों, आज का वर्तमान तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के साथ बूंदाबांदी के बीच आज हम उन सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं जो शिक्षा का दीपक हमेशा जलाए रखते हैं। दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकर हाजिर हूँ मैं आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हल्लू फरमाइश।

आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर। शाम 4:00 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनें और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6, आपकी पसंद आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम आमंत्रित करते हैं अच्छे विचारक जो अपनी प्रस्तुति का प्रसारण करना चाहते हैं। सभी कलाकारों से किसी भी विषय वस्तु पर जो सामाजिक हितकारी हो, हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेजें या कॉल कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मुस्कुराते रहे, आनंद के साथ सुनते रहे रेडियो डीएस 89.6।

इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर।

0: सर नाम बताएं आपका।
1: नमस्कार सर, आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ सर।
0: नमस्कार राजू लवानिया जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: सर मेरी तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से रेडियो डीएस लाइव को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: आपको भी, आपके परिवार और मित्रजनों को भी जन्माष्टमी की और शिक्षक दिवस की ढेर सारी
1: शुभकामनाएं। बिल्कुल दोनों दिवसों की मेरी तरफ से भी और श्रोताओं की तरफ से पूरी टीम को शुभकामनाएं। सर एक भजन है बड़ी देर भरी नंदलाला।
0: अच्छा बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना।
1: धन्यवाद सर, नमस्कार।
0: वेलकम। हेलो।

0: आज भारी बारिश की चेतावनी के कारण द्वितीय पारी की कोई भी कक्षा नहीं चलेगी। कल रविवार का विद्यार्थी टूर अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। कृपया सूचित रहें। डीएस साइंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का। मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ बने रहे। बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
3: सर नमस्कार। हेलो
4: हेलो
3: जी, नाम बताइए सर
4: जी। मोहसिन खान।
3: मोहसिन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: संजय कॉलोनी।
3: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
4: बरसात के मौसम अचानक ही क्या आलम।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के सॉन्ग रेडियो डीएस में कूट के तक।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: My name is Astha Bansal, studying in 9th class. Before coming in DS, I didn't know about foundation. Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point. In quality, regular dark classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
3: Bachpan Public Secondary School, Gangapur City.
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
6: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
7: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
8: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने क्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ।
9: आज भारी बारिश की चेतावनी के कारण द्वितीय पारी की कोई भी कक्षा नहीं चलेगी। कल रविवार का विद्यार्थी टूर अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। कृपया सूचित रहें। डीएस साइंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर सिटी।

0: वीडियो डी है। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: प्रतीक्षा कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर से।
2: पता है प्रतीक्षा कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
3: पंजाबी सॉन्ग है मैं तेनु पैके वाली है।
2: कौन सा गाना है दोबारा पता है?
3: मैं तेनु पैके वाली है।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं गुड़िया आपकी फरमाइश से गाना रेडियो डीएस में। खुल के धन्यवाद।
3: थैंक यू।

0: में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6,
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
2: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
3: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
2: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें।

0: दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6-3-7-8-0-2-4-4-7-5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: गंगापुर सिटी की धरती।

0: जी नाम बताएं। शाह से बात कर रहे हैं गुजर जी। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल
0: सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश करेगा।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: आज भारी बारिश की चेतावनी के कारण द्वितीय पारी की कोई भी कक्षा नहीं चलेगी। कल रविवार का विद्यार्थी टूर अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। कृपया सूचित रहें। डीएस साइंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।

0: फरमाइश, आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4:00 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं।
1: जी जी जी जी
2: हेलो।
1: हाँ हेलो
2: जी, नमस्ते, क्या नाम है सर आपका?
1: जी नमस्कार, मैं ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपका नियमित श्रोता सुरित रमेश साहू बोल रहा हूँ। आदरणीय
2: साहू जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: जी ना, गाना तो ऐसा है आदरणीय, अभी गणेश पर्व सामने त्योहार है तो देवा हो देवा गणपति देवा हमसे बढ़कर कौन।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में। कुल के बहुत बहुत धन्यवाद
1: सर जी। एक आपकी आवाज बहुत मधुर मनमोहक मीठा प्यारी आवाज है आदरणीय, तो एक शेरो शायरी बोलूं आदरणीय?
2: जी बताएं सर
1: जी। खामोश रात के पहलों में सितारे नहीं होते।
2: जी
1: खामोश रात के पहलों में सितारे नहीं होते, इन आंखों में रंगीन नजारे नहीं होते।
2: रंगीन नजारे नहीं होते
1: जी जी जी जी, हम भी ना करते परवाह अगर रेडियो डीएस से।
2: जी
1: आदरणीय ऋषिकेश मीना जी के द्वारा पेशकश किया गया कार्यक्रम, इतने प्यारे ना होते, इतने प्यारे ना होते,
2: इतने प्यारे ना होते। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल के धन्यवाद।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
2: हेलो,
3: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग,
3: क्या होगा?

0: 6375। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: जी नाम बताएं।
3: मोनिका
2: जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
3: सर आप सबको सारी टीम को हैप्पी टीचर्स डे।
2: आपको भी आपके परिवार जन मित्र जनों को धन्यवाद।
3: सर गुरु महाराज के चरणों में वो वाला भजन
2: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया। थैंक यू।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
2: जी नमस्ते।
3: नमस्ते सर।
2: नाम बताएं आपका।
3: शिवम।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं शिवम जी?
3: गंगापुर सिटी।
2: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
3: चंबल घाटी मारे बसुरे।
2: तो सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश करेगा।
4: हालातों के सताए हुए

0: हेलो
1: हेलो
0: सर, नाम बताएं आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर।
0: गाना बताएं सर।
1: लॉफर्स
0: बुला रहे हैं सर आपकी फरमाइश से। हेलो

0: सर है आपका?
1: जी नमस्ते, चंद्रराम उधर बोल रहा हूँ, राम गुप्ता से।
0: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जानू मेरी जान,
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6 यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो,
3: नाम बताए सर।
2: नवीन बैरवा।
3: कहाँ से बात कर रहे
2: हैं? गंगापुर सिटी।
3: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो DS पे?
2: माचम शर्मा का।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी प्रोवाइड करता हूँ। हेलो
4: हेलो,
3: नाम बताए सर।
4: द्वारा गुंजर।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: गंगापुर सिटी।
3: गाना बताए सर।
4: टोटल हरियाणवी सॉन्ग।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: पाके छोड़ दूं किसे चीज की ग्रीड को ना, बत्ती बना तेरी सलाह के साले मने नीड को ना।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: हेलो
4: हेलो
3: जी, नाम बताएं।
4: नमस्ते सर।
3: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
4: विराट गोवर।
3: विराट जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: गंगापुर सिटी।
3: गाना बताएं सर।
4: पल पल।
3: बुला रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश से गाना। हेलो
5: हेलो
3: ना।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नाम बताए सर।
1: ऋतिक मावर,
0: ऋतिक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी नत्या कॉलोनी।
0: गाना कौन सा सुनना चाहते हैं सर?
2: कुछ आ मैंने रात में बोल चला गया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी सुनाई का गाना।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
3: हेलो,
4: नाम बताएं सर आपका।
3: राहुल सैनी।
4: कहाँ से बात कर रहे हैं राहुल जी?
3: गंगापुर सिटी में से बोल रहा हूँ।
4: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
3: क्या जी ले तेरी जिंदगी।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के साथ।

0: हेलो,
1: नाम बताइए सर।
0: सर प्रिंस वेरवा।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सर नशे कॉलोनी।
1: मैं गाना
0: नशे कॉलोनी।
1: गाना बताएं सर। गाना
0: जाट ये ले आ रही थी।
1: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे गाना।
2: हेलो,
1: नाम बताएं।
2: दीपेंद्र।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगा पुटी से।
1: गाना बताएं सर।
2: चंबल के डाकू से।
1: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: आज भारी बारिश की चेतावनी के कारण द्वितीय पारी की कोई भी कक्षा नहीं चलेगी। कल रविवार का विद्यार्थी टूर अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। कृपया सूचित रहें। डीएस साइंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर सिटी।
2: तो?
3: जी नाम बताएं।
2: साविया।
3: साविया जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: सिटी।
3: बताएं साविया जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: रूपोश।
3: रूपोश कौन? बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपको, आपकी फरमाइश करेगा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आपका रेडियो दोस्त

0: जीवन का सरताज है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
6: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
7: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
8: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल।
9: हेलो
10: जी, नाम बताएं।
9: राहुल सैनी।
10: राहुल सैनी कहाँ से बात कर रहे हैं?
9: हम सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी।
10: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
9: हम रोने राने चले थारे फाइटर लड़के देख रहे हैं।
10: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश से।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर।
1: हेलो
2: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
1: सर नमस्ते, नाम बताएं आपका।
2: नाम तुलसी राम मीना, ग्राम टीलू खेड़ा से।
1: तुलसी राम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से।
2: फिल्म का नाम है बेटा और गाने की बोल है तू मेरी मैं तेरा दुनिया से क्या लेगा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का गाना रेडियो डीएस में सुन के। धन्यवाद
2: धन्यवाद।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का। मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ बने रहे। बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
2: हेलो,
3: नाम बताएं सर।
2: वीरेंद्र सिंह।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं गुजर जी?
2: गंगापुर सिटी।
3: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: अरे जान मारे खाई अच्छे सही सही कहते हैं।
3: हाँ जी।
2: अरे जान मारे खाई अच्छे सही सही कहते
3: हैं। सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के साथ।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: हेलो
1: हेलो।
0: नाम बताए सर।
1: सूरज मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सिंगापुर सिटी से।
0: गाना बताए सर।
1: एहसास सॉन्ग
0: है जी।
1: एहसास सॉन्ग
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश करते हैं।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
2: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर।
1: हेलो
2: हेलो सर, नमस्ते।
1: नमस्ते, नाम बताएं आपका?
2: सर सिमरन पटेल।
1: सिमरन जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: सागर मध्य प्रदेश।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: सर दिल देना ही पैगाम है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश पे। गाना रेडियो डीएस में सुन के धन्यवाद।

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में।

0: साथ है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
3: हेलो,
4: नाम बताएं।
3: गुलशन।
4: कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी।
4: गाना बताएं।
3: मैंने तो छोटी लग दिया।
4: क्यों सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश? किस रेडियो डीएस पर? कुल के धन्यवाद।

अरे वो क्यूट है, तुम्हारा भाई भी तो क्यूट है। डोंट वरी ब्रदर, राम जी की लारी, लेट्स गो।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडीइंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कांसेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर।
1: जी नाम बताएं सर।
2: अनिल।
1: अनिल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी से।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
2: किल।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के साथ।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
2: शहर का नया मैजिक रेडियो
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
4: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
3: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
4: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
3: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हेलो,
6: नाम बताएं।
5: गुलशन।
6: कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: गंगापुर सिटी।
6: गाना बताएं।
5: मैंने तो फ्लूट सुन रख दिया।
6: तू सुना रहे मैम आपकी फरमाइश के फोन रेडियो डेस में सुन के बनवा।
7: बहुत क्यूट है यार। अरे वो क्यूट है, ये मेरा भाई भी तो क्यूट है। Don't worry brother, you're the Ramji Gilari. Let's go!

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: जी थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है, क्या नाम है आपका?
2: प्रतीक्षा।
1: प्रतीक्षा कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर से।
1: बताएं प्रतीक्षा, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: पंजाबी सॉन्ग है, मैं तेनू

0: हेलो
1: हेलो, नाम बताओ। गंगापुर की टीम
0: गाना बताए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?

0: हेलो
1: तो सर जी।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: हाँ सर, जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी जी।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: सर आज सुना दीजिए मुझे अपमान की आग फिल्म का गाना है, दिया दिया दिल दिया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।
1: ओके सर जी, थैंक यू।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो
3: हेलो हेलो
2: सर नमस्ते।

0: हाँ भैया नमस्ते, योगेश जांगड़े से मित्र छत्तीसगढ़ से।
1: योगेश जी गाना बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: ये तो सच है कि भगवान है सुनवा देंगे शिक्षक दिवस पर।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश, बड़ी बेहतरीन सा गाना रेडियो देखने को।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
0: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।
5: DS कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। PS प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
6: कहाँ से बात कर रहे हैं?
7: मुहाना से।
6: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
7: परिंदे।
6: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, परिंदे सॉन्ग।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे फलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नए तरह 89.6 रेडियो DS पर।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: ईट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: क्योंकि हमारे साथ गंगा तुम सिटी के हर दिल के
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश 89.6। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी।

बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल का।

106.6 आपकी आवाज आपके पहचान आपका अपना रेडियो।

0: अरे सर, हर गाने का रिमिक्स कर देते हैं सर। सर, हमारी जनरेशन को ये सब समझ नहीं आता, नहीं आएगा कुछ, बोलो यार, छोड़ो यार सर, मेरे को
1: गाने का इक्वल वैल्यू है।
0: अरे कोई कॉल नहीं करेगा भैया गाना,
2: अगर तू समझ नहीं रहा है ये हिट गाना है, तेरे को नहीं करना, तू मत कर, मैं जा रहा हूँ।

0: आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश भी खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधो।

0: दोस्तों दोपहर के 2 बज चुके हैं इस वक्त, अमृतसर ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का भर में आपका रेडियो दोस्त रेसे मीना। और दोस्तों थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मन पसंद कार्यक्रम भूली बिसरी यादें।
1: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज वाला डी एस साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

बड़ी बोरिंग पार्टी है, एक ड्रिंक मारे। नो ओनली वन।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
2: हर बीच में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: Music MG.
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: ETI 9.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी
2: अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा

0: की शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी।
1: अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: गंगापुर सिटी के हर

स्ट्रीट में है सिटी का स्वैग 89.6 रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
1: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
3: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
5: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
6: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
7: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें

0: दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6-3-7-8-0-2-4-4-7-5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास।

रिश्तों की मिठास गंगापुर सिटी है दिल के पास गलियों में यादें चौपाल की बात अपनों के संग हर दिन खासत किससे पुराने यादें सुहानी हर चेहरे में एक नई कहानी मेहनत से जिसने नाम बनाया इस माटी ने उसको गले लगाया खेती की खुशबू शहर की रौनक अपनों की बातें दिल की धड़कन हंसी खुशी और प्यार की बोली

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: माटी की खुशबू, रिश्तों की मिठास, गंगापुर सिटी है दिल के पास। गलियों में यादें, चौपाल की बात, अपनों के संग हर दिन खास। किससे पुराने यादें सुहानी, हर चेहरे में एक नई कहानी। मेहनत से जिसने नाम बनाया, इस माटी ने उसको गले लगाया। खेती की खुशबू, शहर की रौनक, अपनों की बातें, दिल की धड़कन, हंसी खुशी और प्यार की दौलत।

गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। गंगापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों अभी आप ट्यून किए हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों 4:30 का समय हो चुका है, फिलहाल लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी देर में आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: हेलो
3: सर, नाम बताएं आपका।
2: निवेदन कर रहा
3: हूँ चौधरी जी, गाना बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं सर?
2: गाना गुरु जियों के लिए सर, कुरान पिक्चर का है।
3: बताएं सर।
2: आओ मैं पढ़ा दूं तुम्हें एबीसी।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के सॉन्ग, रेडियो डिस्क में खुल के धन्यवाद।

0: जी नाम बताएं। हाँ जी नाम बताएं।
1: सवाई माधोपुर से बोल रहे हैं सर।
0: नाम बताएं।
1: मोनिका बोल रहे हैं सर।
0: मोनिका जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: सर? आप सुना दीजिए अमर से नूर बस से।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का गाना रेडियो डेज़ में कॉल करने के।

चेहरे में एक नई कहानी, मेहनत से जिसने नाम बनाया, इस माटी ने उसको गले लगाया। खेती की खुशबू, शहर की रौनक, अपनों की बातें, दिल की

0: हेलो, नाम बताएं आपका। कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं? गाना बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सांवले सलोने तेरी झीली से
0: सुना रहे हैं आपकी सुबह, इसका बेहतरीन सा सॉन्ग। हेलो

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
0: अतर सिंह गुजर।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी से।
1: गाना बताएं सर।
0: क्या
1: गाना बताएं सर?
0: नीरज में तू दिल में बस है।
1: ठीक है सर,

0: पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
1: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
1: सर नमस्कार, नाम बताएं।
2: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
1: गाना बताएं सर।
2: आप मेरे हम जो लिया खेल तो लिया।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप।
2: सर जी

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
2: Six feet, 8 meters.

सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

0: सारी बात सुनकर दर्जी के मन में बाबा के प्रति प्रेम जाग गया। अब तक तो भगत
1: पर मैं नू बताऊं भूषण सिंह गणेश आलोलिया इन दोनों आगे बैरन है। तू ध्यान रखिए, अगर आज की पार्टी में कुछ पंगा होया तो तेरे हाथ से जींद की सीट गई।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

ईश्वर। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हाँ जी नीरज, किवें लग्या? लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्सिओ ते साडे नवे नवे गाने सुनने लई जी टाइप पी3 चैनल जरूर सबसक्राइब कर लियो।
1: थैंक यू सो मच।
2: जीन पाके ब्राउन रे बन लाके गली तेरी केड़ी मारे ऊफर चला के।

दौलत भी शौहरत भी अज सब कुछ कोड़ मेरे अखां सामने तू नहीं ए हो दिल विच हौल मेरे अज 14 सालां बाद मुड़िया हां उन्हां रावां ते देख के उही हवावां क्यों अज वधियां सावां ने काश जे मिल जे तू ता जिंदगी सफल हो जावे तू गीत मेरे दा कल्ला कल्ला लफ्ज़ हो जावे।

जिस दिन टूटे तेरा परिवार शायद छड़ के चल गया। तो कुछ साल बाद मैं तेनू एक हाथ लिखा तो उसने रोज पढ़ती गई पढ़ता सी तो एक दिन हर रोज हर सवेर तू मेरी वेट कर ते मैनू वेखण वेखण तेरी छोटी जी स्माइल च सब कुछ पता लग तेनू तो पता भी नहीं सी कि इन्नी छोटी जी उम्र च इतना प्यार हो सकता मैनू पता सी तू आएगा ते मैं तेनू दस सकां कि मैं तेनू किन्ना प्यार करदा।

हाँ जी सत श्रीकाल जी, मैं ताडा अपना जुगराज संधु। उम्मीद करदा तुसी मेरे वाला सरदार गाने नूं बहुत ज़्यादा पसंद करोगे ते मेरे अगले सोंग्स नूं सुनने लई ग्रैंड स्टूडियो दे ऑफिशियल चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्यो। सत श्रीकाल जी।